थु रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषी समाचार जिउ पेस पखिनिना दिशा थौ नेपाल सम्बत सिन्छ सौ पिखु द गुलाथो द्वादशी थौ सङ्घीय संसद निगु सदन या मुज्या चुनि तेङ्गु दो छता इले सिंह दरबारे चुनिगु प्रजनसभा मुज्या कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम नेपाल कानुन आयोग नापाङ्गो संशोधन विधेयक 2083 न्याभुइगु ज्यादल दो अथे कानुन मन्त्री गौतम मेलमिलाप सम्बन्धी निकगु संशोधन विधेयक 2083 या त विचार या धैगु प्रस्ताव न्याभ्यादि वेक्ल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत या राष्ट्रिय क्षेत्र अधिकार शिवे पिनिया लागा या सामुद्रिक जैविक विविधता या संरक्षण व छेलबुला या सम्झौता न्याभुइगु ज्यादलदो अथे श्रम युवा तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव बाल श्रम निषेध तथा नियमित यागु विधेयक 2083 या त स्वापु दुगु समिति छे गु प्रस्ताव न्याव्यादि अथे थौ सुथे जत्सी ढुङ्गा चिता इले राष्ट्रिय सभा मुज्या प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा असना नापङ वगु नेपाल विशेष सेवा एन 2082 या साबिक या व्यवस्था मुएगु सम्बन्धी विधेयक 2083 या त दफा दफा सहल या नीति विधायन व्यवस्थापन समिति छेमा धैगु प्रस्ताव न्याभुइगु ज्यादलदु प्रतिनिधिसभा मिगया मुज्या उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी सङ्गीत कासा व सङ्कीपा लागा सेवामूलक उद्योगका रूपमा दर्ता जु या बजेट विनियोजन या नागु धैदिगु दो मुज्या सांसद पिन्सन यस या लिस ले वेक्ल थथे धैदिगु ख प्रतिनिधिसभा मुज्या मिग थिति पिङ्गु विधेयक या त स्वापुदुगु समिति छुएगु प्रस्ताव पारित नाप जुगुदु थोनी मुज्या सांसद पिन्सम बलात्कार थे यागु जगन्य अपराधे बोती कापिन्त अतिक गेसु लागु कानुन देखे मागु तासे ध्यानशालाका यादिगु ख मुज्या सांसद पिन्सम पत्रकार लिपा श्याम मचा गरिमा चौधरी या झाका या विशेष खलना दिसे बलात्कार थे जगन्य अपराधा ओ अपराधी या त गुली द सजाय बिगु धागु सिवे अपराध देखेको कु त या त कानुनी व्यवस्था या मागु खे ब्यादिगु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नाप हदोक 10 गते या नीति कोसिना तगु न्यस लिस छिन छम सांसद पिन्स थतगु न्यस दर्ता या नदिगु दु चिन्यागु न्यस दर्ता या फैगु व्यवस्था दशा तपि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा या सांसद पिन्सन हेगु न्यस मथ अगु ख वेकम पिन्से सुङ्गु जग न्यस तयादिगु ख मेगु दल कोटा कथ न्यस तयादिगु ख सभामुख डोल प्रसाद अर्याल भदौ 5 गते दुनी न्यस दर्ता या फैगु कथ व्यवस्था दुगु नितनादिगु ख संसद सचिवालय कथ रासोपा अमरेश कुमार सिंह कृष्णहरि बुढाथकी व समीक्षा बासकोटा न्यस त्यादिगु दुधासा नेपाली काङ्ग्रेस बासना थापा ओ गीता गुरुङ अथे नेकपा एमालिया एन बहादुर महर व गणेशन ठगुन्ना अथे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या वर्षमानपुन व प्रमेश हमाल न्यस दर्ता यनादिगु दु अथे श्रम संस्कृति पार्टी या हर्कराज राई व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या खुसबु ओली न्यस दर्ता यनादिगु दु कोशी प्रदेश या मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की प्रदेशसभा विश्वास या मत कयादिगु दु मिग प्रदेश सभाजुको मतदाने मुख्यमन्त्री कार्की या पक्ष निन हे कु मत ओगु ख दासा विपक्षे निको मत ओगु ख मुख्यमन्त्री कार्की या त नेकपा एमालिया पिएमओ व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या चिन्हेम प्रदेशसभा दुजपिनसम्म विश्वास या मत ब्यादिको ख नेपाली काङ्ग्रेस या नि गुम प्रदेशसभा दुज मध्ये निम सांसद पिन्सम मुख्यमन्त्री कार्की या विपक्ष मतदान यनादिगु ख राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या सभामुख नाप न्याम प्रदेशसभा दुज मतदान पोतिएका मदिल तासा जनता समाजवादी पार्टी या प्रदेशसभा दुज निर्मला लिम्बु मुज्याए पोतिएका मदिल बागमती प्रदेश या मुख्यमन्त्री किरण थापा थौ विश्वास या मत
काइगुली प्रदेश सभाया मुजा सनिल्या पेता इले चुनी तेङ्गुदु मिगपनि च्याता इले कोचिनातोगु मुजा थौया नीति लिच्छागु प्रदेश सभा सचिव राम कुमार पौडेल थाइतिगु ख बागमती प्रदेश नुम नियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरिया नियुक्त सम्बन्धी कचुवा उच्च अदालत येल हेटौडा इजलास कारण केने त उज जारी यागुदो न्यायाधीश बबिता उप्रतिया इजलास मिग नापाङ्गु सुनवाई यानादिसे मुख्यमन्त्री नियुक्तिया कोचिना छ्या बदर जी मुआ उकिया दसुना पिन्यानु दुने चोया लिस बित उज ब्यादिको ख मुख्यमन्त्री थापा मगर या नियुक्ति प्रक्रिया संविधान या भावना अख जुगु थासे अधिवक्ता मोहन प्रसाद ढकाल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दल या प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ भौदौ पाँच गते विस्कम विस्क उत्प्रेषण भृत दार यानादिको ख रिटे या विशेष सुनवाई यासे अदालत अन्तरिम आदेश या विशेष भदौ दस गते निगु पछ्या त सहल या नीति सतुगुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समाजयात प्रविधि शिवे नैतिकता आचरण व इमान्दारता अपोमा दहिदिगुदु नेपाल जनप्रशासन सङ्घ मिग गुसागोगु हेमबहादुर मल्ल हना ज्याजुस वेक्ल थथे दहिदिगु ख हेमबहादुर मल्ल हना पाखे हना दिपी डाक्टर रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठ व रामेश्वर प्रसाद खनाल यात लसहना ब्यादिसे वेक्ल थथे दहिदिगु ख वेक्ल समाज व दे या त योगदान यागुली वेक त हनागु हेतना दिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा नेपाया विका पन बजा या त स्वच्छ पारदर्शी प्रतिस्पर्धी व व्यावसायिक देखे त सरकार समग्र विज्ञापन पन चक्र भिङ्केको ज्या याना चुङ्गु हितना दिगुदो राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपा या पदाधिकारी पी नापम हिक संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा नाप्ला दिसे वेक्ल नापा विज्ञापन इनेको ज्या आफ्नो अनियमता जुगु हितना दिगु ख सापारु छनुन ह या जनै पुनि खुनु सिलु तीर्थ हुने पिन त स्वास्थ्य सुरक्षा नेगु चोनिगु फुक्क व्यवस्था या धङ्कगु धागुदो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज या झेलुवा चिन्छगु उपसमिति या च्याभाला फुक्क पुङ्गु धागु ख गोसाइकुण्ड गाउँपालिका नाय कैसाङ नुर्पु तामाङ तयारी पुङ्गु नेतनादिगु ख मौसम बाम लासा हेलिकप्टर पाखे न चुन कथ झाका जुलो धासा ओ या त चाहिँ जेङ्के फैगु कथ तयारी जुई ढङ्गुगु वेक्ल कना दिल स्वयम्पी मधुपी थतिर्मिनगु लुमिदी विशेष पूजा आज यागु धार्मिक ज्याजो त जुया चुङ्दु दक्षिया दुनी मधुपी थतिपिनिगु लुम्ती बौद्ध मार्गी पिन्स परम्परागत बाज लिसे स्वयम्पी पूजा आज यागु याना चुङ्गु ख श्रावण या नापङ्गु पूर्णिमा निसे भाद्र या नापङ्गु पुनितक न्यागीगु गुला पर्व या छोले सुनिगा भक्तजन पिस स्वयम्भु माचैते परकर्म ऐना विधिपूर्वक पूजा यागु याइ नेपाल सम्बत्या गुगुला कथ कयातगु गुला पर्व या त पुण्य सञ्चय यागु पवित्र ला कथ लक्षितक हनेगु याना चुङ्गु ख गु या अर्थ पुण्य देखेगु व ला या अर्थ महिना ख गुला पर्व बोधी काइपी भक्तजन पिस धार्मिक ज्याना पुण्य सञ्चन यागु व थगु क्षमता कथ दान यागु परम्परा दु थो इले जीवन या त शुद्ध व सदाचार या त थिति नियम पालना या मागु विश्वास दु छलतक धर्म अनुयायितेसँग पशु या त नोक्सान मयागु मब्युगु सामानका मुजुगु मखुगु खल्या मुजुगु लागु वास वा एला सेवन मयागु तजागु खाता दिने मजुगु मनोरञ्जन मयागु इलेहे नेगु तिसा म घ्यागु ब्रह्माचार्य पालना यागु थिजागु अनुशासन या पालन यामा स्वयम्भू व्यवस्थापन व संरचनामा समिति स्वयम्भू व जख लाग सुचुपिचु रङ तेगु मतजडा निना लक्ष्यङ्क जुइगु गुला पर्व या गोसा गुएगु ज्या यागु महासमिति या दुज राजु लामा जानकारी ब्यादिगु ख साक्येमा बिहार सङ्घ या चिन्छकको पलिस्ता दिया लसे तया
छगु ज्याजो गोसागोगुदो संज्ञा नाय शुभकाजी साकिया सबनाय जुगु उगु ज्याजोले मुछेन्जे संगरत्न साके लस्कु सेनादिगु ख वेक्ल साक्य वंश्या उदे निसे थौ अवस्था साकेतेगु स्थिति बारे ख कुलादिगु ख ज्याजुले संज्ञा कानुनी सल्लाहकार ज्ञान रत्न साक्ये छगुले साक्य समुदाय स्थान तसक चुलाना चुङ्गु खसा लिपाउना तिथि शासक तेगु पाले ओ स्थान मोजुया उङ्गु ख धका नेतनादिल ज्याजुले नोकुपी अम्बरमान साक्ये ओ गौतम रत्न साक्यपिनसम्म महाविहार संज्ञा तिथि पक्षया ख निव्यादिल सभा नाय शुभकाजी साक्ये थो सङ निसुने धुङ्का दे दस पञ्चदान ज्याजो व तद झ निसे दिना चुङ्गु बरे भे यानागु ख कना दिल वेक्ल साक्य समुदाय मुनु त थवा थ मसिके त ग्वाली जुगु व सङ्गठित जु त ग्वाली जुगु ख कुलादिल यही महानगरपालिका वडा नम्बर 18 किला घटवा या आगछे पुननिर्माण याइगु जुगुदो आगछे पुननिर्माण या नीति सडक अलवाल तथी छगु सल नाप कोचा रङ्गुगुदो यही महानगरपालिका 18 वडा ज्याकुती वनेमा आगछे पुननिर्माण या त कया सल यासे महत्वपूर्ण निर्णय या धङ्गुगु वडा अध्यक्ष नु छेकाजी मर्जन धाइदिगु ख लुमिदी देग परिसर या छचाली फल्चा देखेको ज्या धमाधम ह्याना चुङ्गुदु देग परिसर या फल्चा परम्परागत वास्तुशैली देखेको ज्या लिपाङ्गु इले तीव्र गति ह्याना उना चुङ्गु धागुदु यी या भद्रकाली स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व कुबिया चुङ्गु फुलाङ्गु लुमदी देग परिसर या फल्चा परम्परागत नेवा शैली नाला देखे ज्या जुया चुङ्गु ख 2072 साल वैशाख त फुखा च देग परिसर या संरचना क्षति जुगु ख फुकाच क्षति जुगु गुँ दलिपा थनी नि दन्ह 2081 असार निसे परिसर या पुननिर्माण ज्या यहाँगु ख थौकुने देगलिसे उकिया जख या फल्चा सत पुननिर्माण व जिनोर्दार या ज्या जुया चुङ्गु ए महानिक पालका नेतङ्गु दु अमेरिका व क्यानाडा या व्यापारिक कचो अफुया उङ्गुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प क्यानाडा आइट जुगु कार ट्रक व अटो पार्से कया चुङ्गु निन्यागु प्रतिशत अमेरिकी पन्सार्दा अफुयाका निएको प्रतिशत थ्याङ्किगु ख्याचो ब्यादिगुदु थो नुगु पन्सार्दा जनवरी 1, 2027 निसे लागु जुगु धागुदु थोए दोथी क्यानाडा या प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी अमेरिकी राष्ट्रपति या थो पला या हुनी क्यानाडा या त आपल क्षति जुइगु वो अटोमोबाइल उद्योग या त आपल क्षति जुइगु नेतनादिगु तु थो झने अमेरिका निगु अर्ब अमेरिकी डलर या क्यानाडाली हलजोल निगु प्रतिशत भन्सार ते थङ्कुगु दु क्यानाडा न सेप्टेम्बर 8 निसे अमेरिकी हलजोल अथे पन्सार दातेगु धागुदु थौ दे या हिमाली लागा या मो थासे न न्याना वा व च्वापु कुवा वैगु धागुदु दे या पहाडी लागा नाप बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा या चु थासे नाप मध्य प्रदेश नाप कोशी प्रदेश या तराई लागा मो थासे न न्याना वा वैगु धागुदु कोशी बागमती बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी लागा या छगुनीको थासे आपल वा वैगु सम्भावना दु मधेस नाप कोशी प्रदेश या तराई या मो थासे थाकुफे बुइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागु ख मिग सोनिगले नि गुगु फुटी नेगु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु खदासा थौ थोए ल्याखे क्वाइगु धागुदु नेपाल भाषी बुक कोचाल शुभ

प्रस्तुत छ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।

दि रेडियो नेपालीन आङसिरिङ लामा शेर्पा ने शेरिगेकी साङ्ग्युर सेन्रो नाङ सङ्घीय टोसक प्रतिनिधि सभाकी आरिङ्गिन मोसुजो ताङबोकी तन्दकला दितुप सक्दु मेदेउ गनवाए सङ्घीय टोसक टुङ्गी खाङ्की खेपेल ख्याउ लेन नङसिन सला सक्दु तेन्तेन ख्याउ तुसोला देमाथोपु सक्दु सलाङ्गिन मो छुजो ताङबोला देतुप्ला तुसो तेन्तेन ख्याउ सेनवाए प्रतिनिधि सभा नियामावली निथोङ गेजुग्या सुम्की नियम टुकी उपनियम सुम नङसिन सोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी प्रतिनिधि सभाकी सक्दु सलाङ्गिन मो छुजो ताङबोला देतुप क्याने तेन्तेन चुङ्गुप सङ्घीय टोसककी टुङ्छे पद्मप्रसाद पाण्डेकी खेपेल ख्याउ लेनला सेनवाए राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा ऐन नितोङ शिवजु स्या निकी टडी ग्यार्ग्या जब कोर्ला जो विधेयक नितोङ गेचुग्या सुम्ला दाफावर टोङ्गुकी तन्दोक्ला विधायन टडिक सकपाला कल्दोङ्गोकी श्रु प्रस्ताव तेरिकी थुलामतेमा स्वीकृत चौवाए राष्ट्रिय सभाकी आरिङ सक्दुला सिलोन बालेन्द्र शाहकी छोक्ने ठिम डिक्छिम तेजिन सिथु कोर्की लोनपो सोभिता गौतमकी ज्याक्नाङ्गु प्रतिनिधि सभा ने वाउ विधेयकला दाफावर टोङ्गुकी तन्दोक्ला विधायन टडिक सकपाला कल्दोङ्गोकी श्रु प्रस्ताव स्वीकृत चुङ्गुबिन आरिङ सक्दुला शून्य तुसोला छग्मितुई नैतिक तेजिन यौन कोर्की लोपजुङ हम्पुम सुङ्क्योप तेजिन पुम्प्यासा तुई खप्तेला चुङ्गुप लाका मेलाक्पा तुई कोर्ला सुङ्की खाक्सन पोसिगु सुङसुङ राष्ट्रिय सभाकी याम्बा सक्दु बदौलाकी गते चुरुक छेर्मु छुजो ताङबोताङ कमच्याङला देतुप गनवाए ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्से लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी तन्द लक्से सम्बा तुई यार्गे तङक्यान ग्याङसिङ सकुलकी यार्गे डोइङ गलुबिन सिनाङ प्रेसकी ओङछा तङ लेन येगो मिमाङ तुई ओङछाला ग्याङसिङ सकुलकी खाक्सन पोसिगो सुङवाए सार्वजनिक सेवा प्रसारण सकपा नेपाल तङ सामुदायिक रेडियो प्रसारक सोक्पी कोडिग्ला हारिङने जुन ग्याल्सा काठमाडौँला गोजु एसिया पेसिफिक इन्स्टिच्युट फर ब्रोडकास्टिङ डेभलपमेन्ट एआइबिडीकी थेङ निसुजीकी लेनजोमला सुङलप्नगिन ग्याङसिङ लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी ग्याङसिङ लक्से गृह गलसिनाङ मिमाङ तुई लेन ङेगौ ओङछा तङ प्रेसकी ओङछा तङ मिमाङ तुई तमङे लोपु ङेउ ओङछा गृह डप म्याङ्गु सुङसुङ जन्दाश्रम तेजिन रोजगार लोनपो रामजी यादवकी खाङबा लाका कितुब मितिओला टरिक कितुबला लोनखाङकी लाकी सिचु जोन सिन्धुप सुङवाए जुक्टुन सङ्ग्रिल श्रम तेजिन उपभोक्ता सोक्पी हारिङदेउ सक्दोला लोनपो यादवकी श्रम ऐन गृह जोथुप सिंह श्रमिक तुई श्रमिक तिवताङ क्यान डेलो तुप काले मेता डोप सुङसुङ लोनपो यादवकी लोक कल्याणकारी ग्यालखपकी ग्यालखप जोप नासम तङ्गु भिन्सिनाङ ठिमकी कल्याकी जोसलेन्सी श्रमिक तुई कले त्यो मेता जोपला कले चुङ्गुप सुङसुङ सोक्दुला छोक्मी तुई श्रमिक तुई खप्तेला चुङ्गुप लाका मेलाक्पा त्यो मेता जोपला ठिम तम्बु जोगौ तङ खेपा तुई सोक्पा जोने कल्याङोसी क्याने थाप सुल्गौ कोर्ला सुङला सुनाङ वाए कोशी प्रदेशकी लोन्छेन हिक्मत कुमार कार्कीकी ग्याल्खप सिसोक ताङ मिमाङकी छोक्ला तामिया ट्याङबु ताङ तेन्तेन ओतुप लेन्ती अतिरङ ख्याफेल्कीगु खाक्सेन्पो ओतु सुङवाए नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशकी हारिङ कोडिक्याउ सर्वोत्पद दपक्योक बिमा ल्यारिमकी तेम्रिल क्यानाङ्गिन लोन्छेन कार्कीकी ट्याङबु ताङ दशीकी शिला सर्वोत्पा तुई लाका क्यासिङ सिसोक रम्बुडप सुङसुङ लोन्छेन कार्कीकी बिमा कम्पनी तुई मितिओला ट्याङ्गा जोलहमु क्याने लोकु टडिकिगो सुङ्गिन कोशी प्रदेश सुङ्की टडिक्याउ प्रदेश संसार प्रतिष्ठानकी सर्वोत्पा तुई छोक्ला लाकाकिगो सुङसुङ बागमती प्रदेशकी लोन्छेन किरण थापा मगरकी कोच्याक कोर्ला खेलुप रिटला ठिमखाङकी निवेदककी छोक्ला अन्तरिम आदेश मेतेरूप गनवाए लोन्छेनकी खप्तेला ठिमखाङ छेन्पो पाटन हेटौडा इजलासलाई खेलुप कुतुकुतुक रिट निला ठिम्पोन बबिता उप्रेतीकी एकल इजलासकी विपक्षी तुई मिङला गुन्छेन छतेन स्वरूप आदेश खेबेल्क्याउ सेनवाए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागमती प्रदेश सिथु सोखी सचेतक सु कुमारी तामाङ ताङ ठिम ल्यापा मोहन प्रसाद ढकालकी लोन्छेन कोच्याकी खप्तेला कुतुकुतुक रिटबिन्दु हेटौडा इजलासकी उपरजिस्ट्रार बद्री प्रसाद लामिसानेकी ख्यान्तोक नाङसुङ रिट प्रदेश सोकी ल्याखुङ बागमती प्रदेश सोकपा नासोक तङ याम्बा मितुई खप्तेला बिन्दु सेनवाए ठिमखाङकी रिटी कोर्ला टोङ्गु कितुब्ला सला छोकनिकर्ला कतङ्गु सेनवाए नेपाल कम्युनिस्ट शोखा एमालेकी गण्डकी प्रदेश सुङ्की तेमा खोङकी सोखी लोनपोतियो लोकुला थाक्सोत क्यानुवाए हारिङ देउ सिथु सोखी बोर्ड सक्दुकी ती थाक्सोत क्याउ सोखी गोठित लिलबहादुर थापा मगरकी ख्यान्थोक नाङसुङ गोठित थापा मगरकी सेतुप नङसिन एमाले ताङ नेकापा पर्ला याम्बा प्रदेशला सुङ जप सिग्रिल गोचुन सिन्धुप कपला गण्डकी प्रदेशला सङ सुङ जप तन्दोकला सोखा नि डिग्ने लाका गोचु सुङसुङ गण्डकी प्रदेशकी नेपाली काङ्ग्रेसकी तन्दी सुङला एमाले कि छोक्ने गोविन्द बहादुर कार नेपाली भौतिक पूर्वाधार यार्गे तेजिन डिमडुल
टडिक लोनपो ससिङ टडिक तङ कृषि तेजिन सहकारी लोनपोला भीम कार्की जुक्टुन तङ टोसम लोनपोला यशोदा रिमाल तङ ठोतेन लोनपोला लक्ष्मण पाण्डे जुनोतु सेनवाए छरोबङ्गी गेप्सीमा वाउ शतोक तङ टोकपी जसालेन्सी गेलखापकी दासा नाछोकला लाम नागलवाए एमबी कोर्सुङ मक्मिकी सेतुप नङसिन आरिङटोप्ला सेक्ला काभ्रे प्लान्चोक सिन्धुली मकवानपुर नुवाकोट इलाम सिन्धुपाल्चोक रसुवा तङ रुकुम नुप्की लाम्तिओला क्योन फोकु सेनवाए काभ्रे प्लान्चोक ने खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी तङ सिन्धुली डप बिपी गेलाम्ला गमी छुजो टुक्ने जुन टोपकी छुजो जिसेक गाडी तिओ जिङक्यङ मिक्यु गनवाए तुग्राङक्याने छरी जसालेन्सी मकवानपुर कि कान्ति लोकपथ लाम गमी छुजोङा ने टोपकी छुजोङा सेक जिङक्यङ मिक्यु गनवाए नुवाकोट कि टोखा छरे लाम्लासङ गमी छुजो चिथामने जुन टोपकी छुजोङा सेक खक्सेनपो गाडी तिरङ मिसिङ याम्बा गाडी थियो जिङक्यङ मिकितुप गनवाए सिन्धुपाल्चो कि भोटेको सिल सक्पा वडा आङ्गीला लिपिङ बजार लाउतुप अरनीको गेलाम्ला बदौला कि गतेङ्ग कि सेर्मुवाउ टोपी जोसालेन्सी लाम नागलुप सेनवाए दुग्राङ क्याने रसुवा कि उत्तर गय हिल सक्पा वडा आङ्ग खाल्टेला हुतुप त्रिशुली मैलुङ स्याब्रुबेसी लामसङ नागलु सेनवाए नेपाली काङ्ग्रेसकी थेङच्याङी सक्सेन गेकुला सुवाजोकिन आरिङ ठिमखाङ छेन्पोला निवेदन दर्ता चुङवाए सोखी सोक्सो शेरबहादुर देउवा तङ गोमी कार्यवाहक सोक्सो पूर्णबहादुर खड्काकी तङगुप असोसला तिनतिनक्याउ सक्सेन गेकुला सुवाजोकिन निवेदन गेपु सेनवाए ठिमखाङ छेन्पोकी सुङसेपा अर्जुन प्रसाद कोइरालाकी सेतुप नङसिन आरिङ काङ्ग्रेसकी देउवा सोक्पी निवेदन गेपु यिन ती निवेदन कि कप कोर्ला नागते चुचिक छेर्मु सुनवाएकी तन्दोकला पेसी तिनतिनक्याउ सेनवाए सलेन जोङखाला स्क्रब टाइफस नजातेमा मिरा सुम नासगनवाए स्क्रब टाइफस कि जोसालेन्सी दार्मा हिल सोक्पी ओडा आङ चिकताङ ओडा आङ टुग्ने जोन्दा मिरा सुम नासगलुपिन तुसोरिङ बुने जुन नजा गेमो तुप मितिवाला परिसन कितुप रिम्बाला स्क्रब टाइफस नजा थोङगुप्ताङ मेन्जुकी रिम्बाला दाङ ताङ नेपालगञ्जला नासागलुप दार्मा हिल सोक्पी ठोतेन सोक्पी सेतुबिन दार्मा हिल सोक्पी ठोतेन सोक्पी चो यज्ञ बहादुर बस्नेत कि सेतुप नङसिन दिलोला तिरङ पालिकाला मिमिरा सुमचुला स्क्रब टाइफस नजा थोङगुप सेनवाए रेडियो नेपाल ने आरिङकी सेरिके कि साङ्गिर डुप्सुङ 谢谢

सामिन, अब एक गजल की बारी है। पूछते हैं सब ये हुस्न गुलाब सा क्यों है, पूछते हैं सब ये हुस्न गुलाब सा क्यों है, सर ता पा ये निखरता हुआ शबाब सा क्यों है, चमन के फूल आशना हैं तेरे ज़ौक से, फिर ये कलियों के चेहरों पर हिजाब सा कौन है। खामोश हुस्न की अदाओं को तो ज़रा देखिए उनकी, खामोश हुस्न की अदाओं को तो ज़रा देखिए उनकी, सेहरा में यूं नज़र आता हुआ शराब सा कौन है। सुन लेते हैं सब उनकी बातों को बड़े गौर से, बेवजह हर शख्स उनसे लाजवाब सा क्यों है। हुस्न की तमहीद से वाकिफ है हर कोई जहां में फराज, हुस्न की तमहीद से वाकिफ है हर कोई जहां में फराज, दिल के कोने में पुरकशिश मेहराब सा कौन है। सामिन, अब नात शरीफ की बारी है। अनिबा उम्मे हबीबा की आवाज़ में, जिसका बोल है मेरी

ये रेडियो नेपाल है, हफीज़ ख़ान से उर्दू में ख़बरें सुनिए। कौमी असम्बली से नेपाल खसूसी सर्विस ज़वाबित 2042 की साबिका दफात को बचाने से मुतालिक बिल 2083 पर दफावार बहस के लिए आइनी बंदोबस्त कमेटी में भेजने की तजवीज़ को कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली के आज के अजलास में वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह की जानिब से वज़ीर क़ानून इंसाफ़ और पार्लिमानी उमूर सुबिदा गौतम के ज़रिए पेश करदा ऐवान नुमाइंदगान से मौसूला पैगाम समेत के बिल को दफावार बहस के लिए आइनी बंदोबस्त कमेटी में भेजने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। आज के इजलास की साहत सफर के दौरान अरकान असम्बली ने अखलाकी और जिनसी तालीम, ख़वातीन की हिफाजत और जिनसी तशद्दुद में कमी लाने समेत के मौजूआत की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। कौमी असम्बली का अगला इजलास 2/16 बरोज़ मंगल दोपहर 1:15 पर होगा। ऐवान नुमाइंदगान का आज दोपहर 1 के लिए तलब करदा अजलास मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी पार्लिमानी दफ्तर की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक आज का अजलास खसूसी वजूहात की बिना पर मुकर्रर वक्त में नहीं हो सकने की वजह से अजलास कल दोपहर 1 के लिए दोबारा तलब किया गया है। वफाकी पार्लिमानी दफ्तर के चीफ सेक्रेटरी पद्म प्रसाद पांडे के जरिए जारी करदा नोटिस के मुताबिक स्पीकर डोल प्रसाद अरियाल ने ऐवान नुमाइंदगान के जवाब 2083 की दफ़ा 6 की ज़ैली दफ़ा 3 के मुताबिक कल 2/10 दोपहर 1 के लिए इजलास का वक्त मुकर्रर किया है। वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात डॉक्टर बिक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ ही नशरियाती शोबे में तब्दीली आने के बावजूद आज़ादी इजहार ख्याल और आज़ादी सहाफ़त, शहरियों के मालूमात के हकूक़ और अवामी मफादात को नशरियाती निज़ाम के मरकज़ में रखा जाना चाहिए। आज काठमांडू में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग नेपाल और कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की 24वीं कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वज़ीर नशरियात डॉक्टर तिमिल सिन्हा ने कहा कि नशरियाती टेक्नोलॉजी तब्दीलियों के बावजूद शहरियों के मालूमात के हकूक़ और आज़ादी इज़हार ख़्याल और आज़ादी सहाफ़त जैसे बुनियादी उसूलों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मस्नूई ज़हानत AI, डिजिटल प्लेटफार्म और नई टेक्नोलॉजी को अपना कर एतमाद, हकायक की तमीज़, एडिटर की ज़िम्मेदारी और जमहूरी अकदार को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वज़ीर शबाब और मेहनत और रोज़गार रामजी यादव ने कहा है कि हर किस्म के घरेलू कामदारों को मुनज़्ज़म और बावक़ार बनाने के लिए वजारत तरीक़ेकार तैयार कर चुकी है। सनअत व तजारत और मेहनत व तहफ़्फ़ुज़ सार्फ़ीन कमेटी के आज मुनक़िदा इजलास में वज़ीर यादव ने कहा कि जफाकशी से मुतालिक ज़वाबित में तरमीम के बाद मेहनत कशों से वाबस्ता तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कमेटी को बताया कि आवाम फलाही रियासत का ख्वाब देखा गया है, ताहम कानूनी दुश्वारियों की वजह से मेहनत कशों के मसाइल को मुखातब करने में मुश्किल का सामना है। इजलास में कमेटी के अरकान ने मेहनत कशों पर होने वाले तमाम इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कमेटी ने सख्ती के साथ पेश आने और माहिरीन की कमेटी तश्कील देकर मसाइल को पहचानते हुए हल तलाश करने जैसे मौजूदात की जानिब भी हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। नायब सदर ममलिकत राम साहेब प्रसाद यादव ने कहा है कि ऑटोमोबाइल का शोबा नेपाल की मईशत की रीढ़ है। ऑटोमोबाइल के शोबे का मेला नाडा ऑटो शो 2026 की 18वीं कड़ी का आज इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल का शोबा नेपाल की रीढ़ के तौर पर कायम हो चुका है। उस मौके पर नायब सदर ममलिकत यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि पनबिजली के अमीर मुल्क नेपाल ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी करके बर्की गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी MLA ने गंडकी सूबाई हुकूमत से अपने उजरा को वापस बुलाने का फैसला किया है। सूबाई पार्लिमानी जमात के डिप्टी लीडर लील बहादुर थापा मगर ने बताया कि आज मुनक़िदा पार्लिमानी जमात के बोर्ड के इजलास में यह फैसला किया गया। डिप्टी लीडर थापा मगर के मुताबिक MLA और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान दीगर सूबों में इकतदार को लेकर अमली शराकत शुरू होने के तनाजुर में सूबा गंडकी में भी हुकूमत बनाने के लिए दोनों पार्टियाँ मिलकर मुश्तरका तौर पर पहल करेंगी। नेपाली कांग्रेस की क़ियादत वाली मौजूदा हुकूमत में MLA से गोविंद बहादुर नेपाली वज़ीर तरक्यात मादी बुनियादी लवाजमत और ट्रांसपोर्ट हैं, तो भीम कार्की वज़ीर अराजी बंदोबस्त ज़रात और कोऑपरेटिव के वज़ीर हैं और यशोदा रिमाल वज़ीर सन

सयाद हैं, जबकि लक्ष्मण पांडे वजीर सेहत हैं। दरी असना लुम्बिनी सूबाई हुकूमत में हुक्मरान नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 3 नौ मुकर्रर वज़रा ने आज ओहदे और राजदारी का हलफ लेने के साथ ही सूबाई हुकूमत ने तकमील पा ली है। सूबाई चीफ कृष्ण बहादुर घरती से नौ मुकर्रर वजीर सेहत दीपेंद्र कुमार पुन, वजीर मालियाती उमूर और मनसूबा बंदी इंद्रजीत थापा थारू और वजीर ज़राअत राजी बंदोबस्त और कोऑपरेटिव कृष्ण कुशमा थारू ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मौजूदा हुकूमत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से वजीर आला समेत 4 वज़रा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से 3 वज़रा और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से 2 वज़रा रहने पर हुई मफाहमत के मुताबिक काबीना की तश्कील नौ हुई है। बागमती सूबा के वजीर आला किरण थापा मगर की तकरीरी के खिलाफ दायर रिट दरख्वास्त पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के हक में अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। वजीर आला के खिलाफ हाईकोर्ट पाटन के हटौड़ा इजलास में दायर करदा 2 अलहदा रिटों में जस्टिस बबीता उप्रेती के तनहा इजलास ने मुद्दई अलह के नाम वजह दिखाने का हुक्म जारी किया है। हटौड़ा इजलास के डिप्टी रजिस्ट्रार बद्री प्रसाद लामिछाने ने बताया कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बागमती सूबाई पार्लिमानी जमात के चीफ व्हिप कुमारी तामांग और एडवोकेट मोहन प्रसाद ढकाल के जरिए वजीर आला की तकरीरी के खिलाफ दायर करदा अलहदा अलहदा रिट दरख्वास्त पर इब्तदाई समाप्त करते हुए जस्टिस उप्रेती के तनहा इजलास ने ऐसा हुक्म जारी किया है। रिट में सूबाई सरबराह के दफ्तर और सूबा बागमती समेत मुख्तलिफ महकमों और अफराद को मुद्दई अलह बनाया गया है। अदालत ने दोनों फरीक को मशावरत के लिए कल भादो 10 घंटे तलब किया है। सूबा कोशी के वज़ीर आला हिकमत कुमार काकी ने कहा है कि मुल्क माशरा और आवाम के मफाद में सच्चाई और हकायक पर मबनी सहाफत करना ज़रूरी है। नेपाल सहाफ़ी फेडरेशन सूबा कोशी के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ी हसाती इंश्योरेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला काकी ने कहा कि सिर्फ सच्चाई और हकायक पर मबनी सहाफत ही माशरे को मजबूत बनाएगी। वज़ीर आला काकी ने इंश्योरेंस कंपनियों से अपील की है कि वह इंश्योरेंस वाले अफराद की अदायगी के लिए आसान इंतजाम करे। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कायम करदा सूबाई नशियाती अकेडमी सहाफ़ियों के हकूक़ और मफादात के कामों के लिए बजट में किल्लत नहीं होने देगी। बारिश के साथ आए सैलाब तूदार सड़कों में कीचड़ और नदियों के कटाव की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की सड़कें बंद हो गई हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक काबरे पलानचोक सिंधुली मकवानपुर नुआकोट इलाम सिंधुपालचोक रसुआ और रुकम मगरब के सड़क हिस्से मुतासर हुए हैं। काबरे पलानचोक होते हुए खुरकोट नेपाल थोक कटुंजे बेसी सिंधुली गुजरने वाली बीपी शायरा में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र गुज़त रोज़ शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रही। उसी तरह बारिश की वजह से मकवानपुर की कांति शायरा पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई है। नुआकोट के टोखा छहरे सड़क हिस्सा में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इंतहाई ज़रूरी गाड़ियों के अलावा तमाम पब्लिक और निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है। जबकि सिंधुपालचोक के भोटी कोशी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 लिपिंग बाजार वाक़ अरनिको शायरा में भादो 5 घंटे खारे नदी से आए कीचड़ और पत्थर समेत के तूदे की वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद है। उसी तरह रसुआ के उत्तर गया गांव पालिका वार्ड नंबर 5 खाल्टे वाकई त्रिशूली मैलूंग सैफरू बेसी सड़क हिस्से में त्रिशूली नदी के निचले हिस्से से कटाव के बाद ये सड़क हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। काठमांडू के बानेश्वर में ड्यूटी पर रही एक खातून पुलिस के साथ हाथापाई करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ज़िले पुलिस सर्कल काठमांडू के तर्जमान एसपी दान बहादुर थापा के मुताबिक आज बानेश्वर चौक पर ड्यूटी पर मामूर खातून पुलिस ने बेकायदगी से सड़क पार नहीं करने और ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करने की बात कहने पर जुमला के तातोपानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 के हाल काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 बानेश्वर में रहने वाले 27 साल राज कटाहत ने उन खातून पुलिस के साथ हाथापाई की थी। तर्जमान थापा के मुताबिक वाकई की तहकीकात की जा रही है। ज़िला सलियान में स्क्रब टाइफस के इन्फेक्शन से 3 अफराद की
मौत हो गई है। स्क्रब टाइफस की वजह से दारमा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के एक शख्स की और वार्ड नंबर 6 के 2 अफराद की मौत हुई है। दारमा गाँव पालिका की तिब्बी शाख के मुताबिक तवील अरसे से दायमी बीमारियों से मुतासर अफराद की जाँच करने पर स्क्रब टाइफस के इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद इलाज के दौरान दांग और नेपालगंज में उन तीनों की मौत हो गई। दारमा गाँव पालिका की तिब्बी शाख के इंचार्ज यज्ञ बहादुर बसनेत के मुताबिक इस साल सिर्फ इस गाँव पालिका में तकरीबन 30 अफराद में स्क्रब टाइफस की तस्दीक हुई है। तिब्बी शाख के इंचार्ज बसनेत के ने बताया कि बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद टेस्ट करने पर स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन जाहिर हुआ है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। प्रतिनिधि सभाके आजुक एक बजे बैसवला कहल गेल बैठक काल्हि बुध दिनके एक बजे बैसत। संघीय संसदके महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डे आइ जारी केने सूचनामे प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 के नियम 6 के उपनियम 1-3 बुध दिन एक बजे बैठक बैसवासन तय कयल गेल उल्लेख रहल अछि। राष्ट्रसभासँ नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिके व्यवस्था जगबाक सम्बन्धी विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्शके लेल विधान व्यवस्थापन समितिमे पठाल जा कहिके प्रस्ताव सर्वसम्मतिसँ स्वीकृत भेल अछि। राष्ट्रसभाके आजुक बैठकमे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम प्रस्तुत केने प्रतिनिधि सभासँ सन्देशसहित प्राप्त विधेयकके दफावार विचार विमर्शके लेल विधान व्यवस्थापन समितिमे पठाल जा कहिके प्रस्ताव स्वीकृत भेल अछि। आजुक बैठकके शून्य समयमे सांसद सब नैतिक तथा यौन शिक्षा, महिला सुरक्षा तथा यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण लगायतके विषयमे गम्भीर भएको लागत सरकारके ध्यानकर्षण करौलनि। सांसद सब 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरी उप भेल यौनजन्य अपराध तथा हत्याके घटनामे संलग्न दोषीके कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक लेल माग सेहो कयलनि। महिला बाल तथा बाल बालिका उपर होवला हिंसा न्यूनीकरण, साइबर अपराध नियन्त्रण तथा घरेलू हिंसा रोक विद्यमान कानूनके प्रभावकारी कार्यान्वयन आ न्याय सुनिश्चित करबाक लेल थप व्यवस्थित सुधार आवश्यक रहल सांसद सब जोर देलनि। अहिना सांसद सब प्रादेशिक अस्पतालमे चिकित्सक सबके कमी आ लापरवाहीके कारण लेरकोरी महिलाके स्वास्थ्य जोखिममे पड़ल आ बाजुरा लगायतके ग्रामीण जिला सबमे चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सेवाके पहुँच विस्तार करबाक कहित सरकारके ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद सब राजदूतावास विहीन देश सबमे कूटनीतिक पहल आगू बढ़ाबा सेहो सरकारके अनुरोध कयलनि। राष्ट्रसभाके दोसर बैठक 2/16 गते मंगल दिनके 1:15 बैसत। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ऑटोमोबाइल क्षेत्र नेपालके अर्थतन्त्रके मेरुदण्ड भेल बतौलनि अछि। ऑटोमोबाइल क्षेत्र मेला नाडा ऑटोसो 2026 के 18 संस्करणके आइ उद्घाटन करैत ओ ऑटोमोबाइल क्षेत्र नेपालके अर्थतन्त्रके मेरुदण्डके रूपमे स्थापित भऽ चुकल बतौलनि अछि। ओ जल विद्युतके धनी देश नेपाल पेट्रोलियम पदार्थके आयात घटाकऽ विद्युतीय सवारी साधनके उपयोगके जोर देल जेबाक चाही चर्च कयलनि। उपराष्ट्रपति यादव नेपाल जल स्रोतमे धनी भेल आ जल विद्युत उत्पादनमे वृद्धि भऽ रहल अवस्थामे ईंधन आयातमे अरबो टाका बाहर जा रहल स्थितिके अन्त करबाक लेल विद्युतीय सवारी साधन उत्तम विकल्प भेल बतौलनि। देशमे उद्यमशीलता सृजना करबाक लेल नाडा ऑटोसो मोबाइल निर्वाह केने भूमिकाके उच्च प्रशंसा करैत ओ नेपालमे ऑटोमोबाइल क्षेत्रके उत्पादन आवश्यक रहल धारणा रखलनि। नेपाली ऑटोमोबाइल क्षेत्रके अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमे चिन्हावला लक्ष्य नाडाके हेबाक चाही पर जोर दैत उपराष्ट्रपति यादव वातावरण मैत्री आ प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणके लेल चार्जिंग स्टेशन तथा पूर्वाधार विस्तारमे सरकार आ निजीके हाथमे हाथ मिलाकऽ आगू बढ़ लेल ओ सुझाव देलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा प्रविधि के तीव्र विकास संगे संचार क्षेत्र रूपांतर भ रहल बावजूद अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, नागरिक के सूचना अधिकार आ सार्वजनिक हित के संचार प्रणाली के केन्द्र में रखबाक चाही बतौलनि अछि। ओ कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ नया प्रविधि के आत्मसात करैत विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, संपादकीय जिम्मेवारी आ लोकतांत्रिक मोल के आर मजबूत बनेबाक चाही पर जोर देने अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल आ सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ के आयोजना में आइ से काठमांडू में शुरू भेल एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के 24वां सम्मेलन के संबोधन करैत संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा संचार प्रविधि परिवर्तन भेल बावजूदो नागरिक के सूचना पावे के अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जेहन आधारभूत सिद्धांत परिवर्तन नहीं हेबाक चाही बतौलनि। ओ स्वतंत्रता संगे क्षेत्र संचार क्षेत्र के जिम्मेवारी सेहो जुड़ल गेल चर्च करैत नागरिक के सही, निष्पक्ष, संतुलित आ जवाबदेही सूचना उपलब्ध कराब संचार माध्यम के प्रमुख दायित्व भेल बतौलनि। गलत सूचना दुष्प्रचार के समाधान, प्रतिबंध आ नियंत्रण में मात्र नहीं ताक चाहे कहित ओ मजबूत पत्रकारिता, मीडिया साक्षरता, पारदर्शिता, प्रभावकारी व्यावसायिक मापदंड आ नागरिक के विश्वास और वृद्धि के प्राथमिकता देल जेबाक चाही धारणा रखलनि।
मधेस प्रदेश सरकार नेपाल प्रहरी के अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमै सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्यके सङ्ग मधेस प्रदेश प्रहरीका विभिन्न सञ्चार उपकरण सब हस्तान्तरण कयलकै छ। मधेस प्रदेशके गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामके मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमके बीच यी सञ्चार उपकरण हस्तान्तरण कयलकै छ। सञ्चार उपकरणमे मेटल डिटेक्टर, सिसिटिभी, वाल थ्रो, सिसिटिभी मरम्मत सम्बन्धी सामग्री तथा सडक सुरक्षाक लेल आवश्यक रहल अन्य सहयोगी सामग्री सब रहलै छ। हस्तान्तरण कयल गेल उपकरण सँ मदद सँ मधेस प्रदेश प्रहरी के प्रविधि मैत्री अनुसंधान में मदद पहुंचत से विश्वास मंत्रालय के रहले छ। सामग्री सब हस्तांतरण करत मधेस प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो प्रहरी के प्रदान कयल गेल संचार उपकरण के मदद सँ अवैध सामान सामग्री के पहचान करबाक लेल तथा सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ बनेबाक लेल सहयोग पहुंचत से विश्वास व्यक्त कयलनि। उप प्रदान कयल गेल सामग्री सब के उपयोग सँ सड़क सुरक्षा के लेल जड़ान भेल सीसीटीवी कैमरा के नियमित मरम्मत तथा संरक्षण में मदद पहुंचत से बतावत मधेस प्रदेश सरकार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी के अपराध अनुसंधान में मदद पहुंचत एहन किसिम के सामग्री सब निरंतर रूप में हस्तांतरण करत जाब से बतौलन। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारी नेपाल प्रहरी के अनुसंधान के मजबूत बनेबाक लेल तथा अपराध नियंत्रण में प्रदेश सरकार प्रदान केने उपकरण से सहयोग पहुंचत से विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में मधेस प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के सचिव डॉक्टर बिंदेश्वर प्रसाद लेखक सहित के नेपाल प्रहरी के प्रदेश स्थित उच्च अधिकारी सब के सहभागिता रहल छल। सरकार गठन केने बीरगंज स्थित चीनी मिल कारखाना अध्ययन कार्यदल चीनी मिल क्षेत्र के स्थलगत अध्ययन कयलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सीनियर डिवीजन इंजीनियर सीडीई श्रीकांत यादव के संयोजकत्व में कार्यदल पिपरा स्थित मिल के स्थलगत अनुगमन कयने छल। एहि अवसर पर कारखाना भवन सहित के भौतिक संरचना मशीनरी तथा पार्ट पुर्जा के वर्तमान अवस्था उपयोग के संभावना के संबंध में अध्ययन कयने कार्यदल के संयोजक यादव बतौलन। सरकार यह भादो एक गते ई कारखाना पुनः संचालन के संभाव्यता अध्ययन करबाक लेल यादव के संयोजकत्व में आपूर्ति मंत्रालय के शाखाधिकृत ज्योति पोडेल आ मंत्रालय के सलाहकार श्याम शर्मा सदस्य रहल कार्यदल गठन कयने छल। कार्यदल 15 दिन भीतर कारखाना के वर्तमान अवस्था अध्ययन कर पुनः संचालन के संभाव्यता आवश्यक कार्य योजना तैयार कर सरकार के सुझाव सहित के प्रतिवेदन देत। आर्थिक मंदी लगायत के कारण मधेस प्रदेश में गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में उद्योग आ वाणिज्य दिस 1938 उद्योग व्यापार बंद भेल अछि। मधेस प्रदेश सरकार उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्रालय के हिसाबे गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में उद्योग दिस 821 आ वाणिज्य दिस 1117 का 1938 उद्योग व्यवसाय के लगत कट्टा भेल अछि। गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में मधेस प्रदेश में 5080 नया उद्योग दर्ता भेल अछि। अवधि में परसा में 1101, धनसा में 777, बारा में 639, सरलाही में 636, सिरहा में 554, रोहतक में 533, महतरी में 514, सप्तरी में 314 नया उद्योग दर्ता भेल। मंत्रालय के सूचना अधिकारी उपेंद्र कुमार महतो बतौलनि अछि गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में 7540 उद्योग नवीकरण भेल अछि। पहाड़ी जिला सा पड़ोसी भारत धरि के रोगी के चाप रह वाला महतरी के बर्दीवास वार्ड नंबर 3 गोरीडडा स्थित सर्वदंश उपचार केंद्र में जीवन रक्षक एंटीस्नेक भेनम सीरम के गंभीर अभाव देखल गेल छे। आवश्यकता हिसाबे दवाई आपूर्ति नहीं भेला सा केंद्र के उपचार सेवा थप दबाव में पड़ल छे। रोगी के चाप के दृष्टिगत करत केंद्र में कमती में 5 दवाई मौजदात में रखबाक चाही। केंद्र के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद देवकोटा बतौलन इससे पहले 6 ढेर दवाई स्टोर में रही छल। अई केंद्र में पिछला 6 महीना से माग हिसाबे दवाई आपूर्ति अखन होब नहीं सकल अछि। बीतल अखाड़ में सर्पदंश के रोगी के संख्या बढ़लाक बाद उपचार केंद्र कमती में 500 भायल ए माग केने छल। टेको स्थित इपिडेमियोलॉजी शाखा से 2 बेर 282 भायल मात्र आपूर्ति भेल। दवाई अभाव भेलाक बाद प्रदेश आपूर्ति स्वास्थ्य व्यवस्थापन केंद्र से 30 आ सिरहा स्थित प्रादेशिक अस्पताल से थप 30 भायल आनि के रोगी के उपचार संभव भेल देवकोटा बतौलनि अछि। आब खेल समाचार। मलेशिया में आयोजना होवला एसीसी प्रीमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता के तैयारी में रहल नेपाल घरेलू टोली मलेशिया ऊपर जीत हासिल कयलक अछि। मलेशिया सेलोंगोर टर्फ मैदान में आई भेल अभ्यास खेल में नेपाल घरेलू टोली मलेशिया ऊपर 9 विकेट से जीत निकालक अछि। जीत के लेल मलेशिया देने 233 रन के लक्ष्य पाछू करत नेपाल जवाबी बैटिंग करत वर्षा भेल छल। जाहि पश्चात निर्धारित 50 ओवर के खेल के छोट कक 48 ओवर में आनल गेल छल। अही संगे नेपाल 48 ओवर में 228 रन के नया लक्ष्य प्राप्त कलक। ई लक्ष्य नेपाल 28 ओवर में 1 विकेट के क्षति
एकक पूरा कलक। नेपाल के लिए ओपनर आसिफ शेख सर्वाधिक 161 रन के योगदान दिले। वो 85 बल में 12 चौका आ 12 छक्का प्रहार कने छले आ 161 रन बनौने छले। अहिना अर्जुन कुमार 61 रन में अवजित रहले। ऐसे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कने मलेशिया 48.2 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 232 रन के योगफल तैयार कने छल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता होने के लिए सांसदों का सरकार का ध्यानाकर्षण। नागरिकों के सूचना के अधिकार और सार्वजनिक हित को संचार प्रणाली के केंद्र में रखने पर सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा का जोर। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को रोकने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर। और हैती में सशस्त्र समूह के हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा ने नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 की पूर्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने संबंधी विधेयक 2083 को दफावार चर्चा के लिए विधायन प्रबंधन समिति में भेजने जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विधेयक को दफावार चर्चा के लिए विधायन प्रबंधन समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। आज की बैठक के शून्य समय में सांसदों ने नैतिक तथा यौन शिक्षा, महिला सुरक्षा और यौन हिंसा में कमी लाने सहित विभिन्न विषयों पर गंभीरता से काम करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरी के साथ हुए यौन अपराध और हत्या की घटना में संलिप्त दोषियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग भी की। इसी तरह सांसदों ने प्रादेशिक अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी और लापरवाही के कारण प्रसूता महिलाओं का स्वास्थ्य जोखिम में पड़ने तथा बाजुरा सहित ग्रामीण जिलों में चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच विस्तार करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने ऐसे देशों में जहां नेपाली दूतावास नहीं है वहां कूटनीतिक पहल आगे बढ़ाने का भी सरकार से अनुरोध किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 16 भाद्र गते मंगलवार दोपहर 1:15 होगी। प्रतिनिधि सभा की आज दोपहर 1 होने वाली बैठक अब कल बुधवार दोपहर 1 होगी। संघीय संसद के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा आज जारी सूचना में बताया गया है कि प्रतिनिधि सभा नियमावली के अनुसार बैठक बुधवार दोपहर 1 के लिए निर्धारित की गई है। युवा, श्रम और रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा है कि सभी प्रकार के घरेलू कामगारों को व्यवस्थित और सम्मानजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने कार्यविधि तैयार कर ली है। उद्योग और वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज हुई बैठक में मंत्री यादव ने कहा कि श्रम ऐन में संशोधन होने के बाद श्रमिकों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने समिति को जानकारी दी कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई हो रही है। बैठक में समिति के सदस्यों ने श्रमिकों के साथ होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए समिति को कठोर रूप से प्रस्तुत होने, विशेषज्ञ समिति का गठन कर समस्याओं की पहचान करने और समाधान खोजने सहित विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित कराया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि तकनीकी विकास के साथ संचार क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति और प्रेस स्वतंत्रता, नागरिकों के सूचना के अधिकार तथा सार्वजनिक हित को केंद्र में रखना जरूरी है। काठमांडू में जारी AIBD के 24वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ मीडिया को तथ्यपरक, निष्पक्ष और जिम्मेदार सूचना प्रसारित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत सूचना पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध के बजाय मजबूत पत्रकारिता, मीडिया साक्षरता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को रोकने की मांग करते हुए आज सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। पार्टी के पूर्व सभापति शेर बहादुर देउबा और तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने आगामी असोज में निर्धारित महाधिवेशन को रोकने का आदेश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला के अनुसार आज कांग्रेस के देउबा पक्ष द्वारा दायर याचिका में पूरक निवेदन भी दर्ज कराया गया है। याचिका पर सुनवाई के लिए भाद्र 11 गते की तारीख तय की गई है। कांग्रेस की निर्वाचन समिति ने 15वें महाधिवेशन का कार्यक्रम सार्वजनिक करते हुए बताया कि महाधिवेशन आगामी अश्विन 16 से 19 गते तक काठमांडू में होगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकार में सत्तारूढ़ नेकपा के 3 नवनियुक्त मंत्रियों ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पूर्णता पा ली है। स्वास्थ्य मंत्री दीपेंद्र कुमार पुन, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री इंद्रजीत थारू तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री कृष्णा कुष्मा थारू ने प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरतीमगर के समक्ष शपथ ली है। सल्यान में स्क्रब टाइफस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है। दामरा गांव पालिका के स्वास्थ्य शाखा के अनुसार संक्रमण के कारण बड़ा नगर नंबर 5 के एक और वड़ा नंबर 6 के 2 पुरुषों की उपचार के दौरान मौत हुई है। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञ बहादुर बसनेत के अनुसार दारमा गांव पालिका में 30 और अन्य स्थानों में 11 समेत कुल 41 लोगों में स्क्रब टाइफस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नवलपरासी पश्चिम स्थित नापी कार्यालय के सर्वेक्षक बिंदेश्वर शाह सूढ़ी के खिलाफ गैरकानूनी संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आयोग के अनुसार सूढ़ी ने 2046 से 2081 तक 3,71,84,551 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। उनकी कुल वैध आय 6,03,85,000 रुपए थी, जबकि खर्च और निवेश 9,75,69,000 रुपए पाया गया है। संपत्ति जब्ती के प्रयोजन से उनकी पत्नी सुमित्रा देवी शाह को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हैती की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस के पास स्थित क्रेश काफ इलाके में सशस्त्र गिरोह के भीषण हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हमला सोमवार रात करीब 10:30 बजे शुरू हुआ। हथियारबंद हमलावरों ने इलाके में घुसकर लोगों पर हमला किया और कई घरों में आग लगा दी। कुछ स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने विस्थापित लोगों के शरण लेने वाले एक चर्च को भी निशाना बनाया। केसकाफ राजधानी के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और यहां से पोर्ट आ प्रिंस की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर नजर रखी जा सकती है। इलाके में पिछले वर्ष से सशस्त्र गिरोहों के करीब 1 दर्जन हमले हो चुके हैं, जिसके कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हमले के बाद स्थानीय लोगों में सरकार और पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि पुलिस स्टेशन के बेहद करीब हमला होने के बावजूद सुरक्षाकर्मी लोगों की रक्षा नहीं कर सके। कई लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रमुख के इस्तीफे की मांग की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता होने के लिए सांसदों का सरकार का ध्यानाकर्षण। नागरिकों के सूचना के अधिकार और सार्वजनिक हित को संचार प्रणाली के केंद्र में रखने पर सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा का जोर। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को रोकने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर। और हैती में सशस्त्र समूह के हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: स्टार 1415 हेस डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

शरण चरण की बता दे। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का चरण कमल को शरण ग्रहण कर दे। उन्हें मां अटल भक्ति को याचना सहित कार्यक्रम अध्यात्म संदेश मां यहाँ हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। कार्यक्रम को प्रारंभ माने श्रवण करो जगतगुरु श्री द्वारा वितरित नाम सुधारस।